0: शक।
1: कहना है वजू करने से शक्ल पाक होती है, कुरान पढ़ने से अक्ल पाक होती है। कसम खुदा की ये तस्लीम है मुझे तारिक, वली का जिक्र करने से नस्ल